0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
2: बादशाह, तो तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता, ओ मूवी जिहदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
1: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू ढिल्लों, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट ढिल्लो फिर कहेंगे
2: ढिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
0: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
3: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं हूं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे चुन रहे हैं रेडियो।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।
4: स्टैटिक सीज़न बेबी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
1: हाँ जी रेडियो।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: रेडियो हाँ जी 1674 एम ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी। अज 16 मई 2026 शनिवार दा दिन, भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां दा इह खास बुलेटिन लैके आए। और अज दे दिन दियां असल दे विच इस वीकेंड दे दरमियान की कुछ हो वापरेगा उहदे नाल जुड़ियां कुछ अपडेट्स ने। इस तो इलावा लंघी रात दियां कुछ अपडेट्स भी तुहाडे नाल सांझियां करदे चलदे हां। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल शुरुआत करदे हुए, जिथे अमरीका ते चाइना दे राष्ट्रपति दी आपस दे विच मुलाकात होने बड़ी, दो दिन दौरा सी डोनाल्ड ट्रंप दा चीन दे राजधानी शहर बीजिंग दे विच, उत्थों दे राष्ट्रपति जी जिनपिंग दे नाल दो दिन तक यह गलबात करन तो बाद ट्रंप वापस वाशिंगटन परत गए। तो इस यात्रा नूं उन्होंने कदे भी ना भुलाण वाली एक यात्रा दस्या, इसनूं एक इतिहासक ते मील पत्थर करार दिता। शिखर वार्ता दे आखिरी दिन की कुछ होया उह तुहानूं दस्सदे चलिए कि एक सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस च पता चलिया कि दोहे नेतावां ने अपनी दवली गलबात दे दरम्यान वपार ते होरना मुद्दियां तो इलावा ईरान दे उत्ते भी चर्चा की है। हालांकि गलबात दे असल मुद्दियां नूं लैके और विस्तार जानकारी सांझी नहीं की गई, खास तौर ते ताइवान वर्गे विवादित मुद्दियां दे उत्ते। व्यापार या किसी बड़े समझौते नूं लैके भी कोई ऐलान नहीं होया। आम तौर दे उत्ते जदों दो बड़े नेता मिलते ने तां आपसी देशां दे होए बड़े समझौतियां दा ऐलान भी करदे चलदे ने, पर इस दरम्यान कोई वड्डा ऐलान सामने नहीं आया। समिट दे दरम्यान जिहड़ा फॉक्स न्यूज़ है उसदे एक इंटरव्यू दे विच ट्रंप ने भी कहा सी कि चीन ने अमरीका तो तेल खरीदन ते 200 बोइंग जहाज़ खरीदन दा वादा किया है। हालांकि चीन ने हाले तक कदे कोई टिप्पणी नहीं की है। बहुती वार ट्रंप दे दावियां दे उत्ते यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उधर जी जिनपिंग ने ट्रंप नूं जोंगनहाई दे कैंपस दा दौरा भी कराया, जिथे चीन दे सिखरले अधिकारी रहिंदे ने, काम करदे ने। आम तौर दे उत्ते मन्निया जांदा है कि यह चीन दा बेहद गुप्त टिकाणा है, इत्थे कदे भी किसी स्टेट्समैन नूं नहीं लिजाया जांदा। उत्थे इस तों इलावा दूजियां कौमांतरी खबरां दी भी सांझ पांदे हुए चलीए, ते अगली खबर जिहड़ी ओह पाकिस्तान दे नाल जुड़ी हुई, जिथे कौमांतरी मुद्रा भंडार यानी IMF का कहना है कि पाकिस्तान के आर्थिक विकास नूं मजबूत करन दे लई बहुत सारिया आर्थिक रणनीतियां की लोड़ है, पर मध्य पूर्व दे विच जंग ने पाकिस्तान दे विच आर्थिक अस्थिरता पैदा कर दिती है। IMF ने पाकिस्तान की एक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है, जिस दे विच वित्तवरे 2026 के पहले 6 महीनों के दौरान पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर ते विदेशी मुद्रा भंडार दे विच वाधा होया दस्या गया। महंगाई कंट्रोल च रही है, चालू खाता कुल मिला के संतुलित रहा है। IMF की समीक्षा रिपोर्ट दे विच यह भी कहा गया कि मध्य पूर्व दे विच जंग दे प्रभाव पाकिस्तान दे आर्थिक दृष्टिकोण तो काफ़ी ज़्यादा माड़े रहे ने। IMF का मानना है कि ईरान अमरीका जंग ने पाकिस्तान दे विच आने वाले दिनों च होर महंगाई वधा देनी है, क्योंकि पाकिस्तान भी ज़्यादातर अपना फ्यूल जिहड़ा है वह इंपोर्ट करवाता है, 81% तक खाड़ी देशों तो आता है, जबकि रिमिटेंस यानी कि दूसरे देशों तो आने वाला जिहड़ा धन हों पैसा हों उसका 55% भी खाड़ी मुल्कों तो आंदा है, जो कि पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार का सब तो अहम स्रोत है। तो यही खाड़ी मुल्क इस वक्त अस्थिरता के दौर दे विचो गुजर रहे हैं। और IMF के मुताबिक जंग का खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था के उत्ते नकारात्मक प्रभाव पाएगा ही, पर इस दरम्यान उन्हों देशों के उत्ते खास तौर पर पाकिस्तान ही ऐसे देशों पर भी प्रभाव पएगा जिहड़े इन्हां मुल्कां दे उत्ते काफ़ी हद तक निर्भर रहिंदे ने। विदेशों तो भेजी जाने वाली धनराशि पाकिस्तान के बाहरी भुगतानों के लिए विदेशी मुद्रा का सब तो अहम स्रोत होंदी है, यानी कि बाहरों जिन्ना भी पैसा आंदा वह पाकिस्तान के अंदरूनी भुगतान के लिए या फिर विदेशी कर्जिया के भुगतान के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होंदा है। उत्थे अमरीकी राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने ईरान के परमाणु प्रोग्राम नूं 20 साल के लिए टालन दे वास्ते कोई या उसनू रद्द करन वास्ते कोई इतराज़ तो नहीं है। एयरफोर्स वन जहाज़ तो उतरद्या होया जिवें ही वाशिंगटन गए तो उन्होंने ईरान के परमाणु प्रोग्राम के उत्ते

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
3: रेडियो हांजी 1674 AM
4: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
5: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
6: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
7: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
6: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
7: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
6: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
7: आहो जी आहो
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
8: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
9: हां जी रेडियो

रेडियो हाँ जी 1674 AM जन्म तारिया ढिड दी लोड़ चो मर जाणगे ढिड दी लोड़ थले घड़ी सुख दी भाल दे भला कित्थों जिहड़े रहणगे बेगाने बोड़ थले शायद जिहड़े 80s दे 70s दे या ईवन अर्ली 90s दे बच्चे ने उन्होंने दूरदर्शन दे उत्ते ये नाटक कदे ना कदे जलंधर दूरदर्शन दे उत्ते देखिया होना। अजमेर सिंह औलख होरां दे बेगाने बोर्ड की छा

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਹਨ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1600।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन, विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: रेडियो हाँ जी 1600 चौहत्तर
1: देखो हो गया फिर दौड़ होगी शुरू देखो क्या

0: करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: हम थोड़े मोटे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल, इश बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: अवे सिडनी वालों, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माधवन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

स्क्रीन ब्लोअर, स्क्रीन ब्लोअर, हाँ जी हाँ जी, 16-74 ये नहीं है 71-72, ये है 16-74, ये है 16-74, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: दस वस्तु ले पा छे पावे, एक बस कारण भी खोट गवावे।
1: एक पी ना दे दस पी हिर ले ताओ मूड़ा कहो कहां करे।
0: जिस ठाकर सो ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कारा।
1: जाके मन लागा प्राण मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा।
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया।
1: अगणत साहू अपनी दे रास खात पीत बरते आनंद उलास।
0: अपनी अमान कछ बहुर साले अज्ञानी मन रोस करे।
1: अपनी प्रति तापी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे।
0: जिसकी बस सागे राख है पप की आगे माने माथे।
1: उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल।
0: अनक पात माया के हे सर पर होत जान अनेक।
1: बिरकी छाया सो रंग लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे।
0: ज्योति सह सो चालन हार लपट रहो ते अंध अंधार।
1: बटाऊ सो जो लावे नेहे ताको हाथ ना आवे के हे।
0: मन हर के नाम की पीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई।
1: मिथ्या तन तन कुटंब सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया।
0: मिथ्या राजु मंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल।
1: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता।
0: मिथ्या त्रोम अभिमान मिथ्या आप ऊपर करत गुमान।
1: अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण।
0: मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हस पर दरुक हिरे।
1: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुसवाद।
0: मिथ्या चिन पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे।
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा।
0: बिन मुझे मिथ्या सप है सफल दे नानक हर हर नाम ले।
1: बिरथी साख्त की आर जा सच बिना कह होवत सूचा।
0: बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध।
1: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाई मेघ बिना ज्यों खेती जाए।
0: गोविंद भजन बिन बिथे सब काम जो कर प्रते निरार दाम।
1: तन तन ते जन जिह घट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ।
0: रहत वर कछ अवर कमावत मानी पीत मुखो गंडलावत।
1: जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू पीन।
0: और उपदेश है अपना करै आवत जावत जन मैं मरै।
1: जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार।
0: जो तुम भाने तिन पर जाता नानक उंजन चन प्राता।
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आप मान।
0: आपे आप करत नवेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा।
1: उपाव स्यान सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत।
0: पावे तिसलै लड़ लाए थान थनंत रहा समाए।
1: सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी।
0: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भग जना कै मन विश्राम अठ पंज सलोक।
1: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अमेव। नानक प्रशर नागति कर प्रसाद गुरुदेव। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
0: जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे।
1: जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परमगत पावे।
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याज सदा मन अंदर।
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना।
0: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग।
1: जय प्रसाद पाठ पटम्बर हंडावे तिसे त्याका तब लुभावे।
0: जय प्रसाद सुसे सुई जय मन आठ पहता का जस गवी जय।
1: जय प्रसाद तुझ सब को मान मुखता को जस रसन बखान।
0: जय प्रसाद तेरहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म।
1: प्रभ जी जपत दर गय मान पावे नानक पथ सेती कर जावे।
0: जय प्रसाद और कंचन देही लिव लाओ तिस नाम स्नेही।
1: जय प्रसाद तेरा उला रह तो मन सुख पावे हर हर जस कहत।
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सनी प्रभ ठाकर प्रभता कह।
1: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभ उचे।
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे।
1: जय प्रसाद आभूखन पहरी जय मन तिन सिमरत क्यों आलस कीजै।
0: जय प्रसाद असुहस्त असवारी मन तिस पर को कबू न बिसारी।
1: जय प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरो प्रभ अपने मना।
0: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत सहते आई।
1: सहते आ जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है।
0: जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
1: जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी।
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
1: जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह।
1: जय प्रसाद सुनै करनाद जय प्रसाद पेख है बिस्माद।
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सो सहजे बसना।
1: जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है।
0: जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सो सह समावे।
1: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जय प्रसाद तू पट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार।
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप।
0: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूर है।
1: जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच।
0: जय प्रसाद सब कीत होए नानक जाप जपै जप सोए।
1: आप जपाई जपै सो नाओ आप गाए सो हर गुण गाओ।
0: प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास।
1: प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए।
0: सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हू लया।
1: जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक न कह कछु न हाथ।
0: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ छे श्लोक।
1: आगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचार्य कथा सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: साधक संग उजल होत सत्संग मल सगली को
1: साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सो ज्ञान
0: साधक संग पूजे पमनेरा सत्संग सुबहुत नबेरा
1: साधक संग पाए नाम रतन साधक संगे कुपर जतन
0: साधक की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी
1: साधक संग अगोचर मिलै साधक संग सदा प्रफुल्ल
0: साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा
1: साध संग हो सब की रेन साधक संग मनोहर बैन
0: साधक संग न कतू धावे साध संग अस्तित्व मन पावे
1: साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन समीर साधु के संग महापुनी
1: साध संग किसे नहीं बैर साधक संग न बिंगा पैर
0: साधक संग नहीं को मंदा सत्संग जाने परमानंदा
1: साधक संग नहीं हो ताप साधक संग तजै सा बाप
0: आपे जाने साध वडाई नानक साध प्रभु बनियाई
1: साधक संग न कबहू तावे साधक संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह
1: साधक संग बसै थान उच साधु के संग महल पहुंचै
0: साधक संग दिड़े सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म
1: साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान
0: साधक संग सब कुल उधारे सासंग साजन मीट कुटम निस्तारे
1: साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुबह सुर देवा
1: साधु कै संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन
0: साधक संग सर्व थान गम नानक साधक संग सफल जन्म
1: साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल
0: साधक संग कुलूकत हर साधक संग नर पर हर
1: साधक संग इहा उहा सुहिला साध संग बिछड़त हर मेला
0: जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिथा जावे
1: पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उदरै साध सुन रसै
0: साधक संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ
1: साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तर है
0: साधक संग लगे पर मीठा साधु कै संग गड़गड़ डीठा
1: साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी
0: साधक संग मेटै सब रोग नानक साध भेटै संजोग
1: साध की महिमा भेद न जाने जीता सुने तेता बखियाने
0: साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत
0: साध की शोभा उई ते उची साध की शोभा मूज ते मूची
1: साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्रा भेद न पाई
0: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सत श्लोक
1: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक बिन कोए नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: दम ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख
0: ब्रह्म ज्ञानी कै दिस समान जैसे राज रंग को लागै तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी कै तीर जेक ज्यो बसदा को खोदै को चंदन ले
0: ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तार ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही बिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी उच ते उचा मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रवाप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रसंग
1: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जगत ब्रह्म ज्ञानी अहबो त्याग
1: ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कविता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस गुण भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माह
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुकुत जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बानी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ अठ श्लोक
1: उतार है जो अंतर नाम सर्व मैं पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक हो अपारस सगल निस्तार है सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: मिथ्या नाही रसना परस मन मैं पीत नरंजन दर्श
1: पर तेरे रूप न पेख है नेत्र साध की टहल संत

0: अहो फल की इच्छा नहीं बाछा है, केवल पात कीर्तन संग राचा है।
1: मंत अनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपा,
0: आप दृढ़ है अवरह नाम जपावे, नानक हो वैष्णो परमगत पावे।
1: भगवती भगवान भक्त का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग।
0: मंते बिनसै सगला भरम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म।
1: सात संग पापा मल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे।
0: भगवंत की टहल करे नितनीत, मंता नरपै विष्णु प्रीत।
1: हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे।
0: सुपंडित जो मन पर बुद्ध, राम नाम आत्म सुध है।
1: राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे।
0: हर की कथा हृदय बसावे, सुपंडित फिर जो न आवे।
1: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल, सुख मैं जाने स्थूल।
0: चौं वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश।
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौं वरना मैं जपे को नाम।
0: जो जो जपे तिसकी गाथ होए, साध संग पावे जन कोए।
1: कर कृपा अंतर उधारे, पशु प्रेत मुक्त पाथर को तारे।
0: सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण मंगल गुण गाम।
1: आहो जुगत किते ना पाई है धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म।
0: जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास।
1: आत्म नाम तिस नदरी आया, दास संतर भाय तिन पाया।
0: सदा नित नित हर जान, सो दास दरगह प्रवान।
1: अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पर।
0: सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास।
1: रब की आ गया तुम्हें तावे, जीवन मुक्त सो कहा वै।
0: ऐसा हरक तैसा सोग, सदा अनंत है नहीं वियोग।
1: सुन तैसी उसमाटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी।
0: तैसा मन तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान।
1: जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ परख कहिया जीवन मुक्त।
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित का राखे तैसा तिनाओ।
1: आपे कन करावन जोग, प्रभावे सुई फन होग।
0: असरे आप हुए अंतरंग, लखिन जाहे पार ब्रह्म के रंग।
1: जैसी मत दी तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश।
0: सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल।
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ नौ श्लोक।
0: उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारा वार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
1: कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी।
0: कई कोट पै तीर्थ वासी, कई कोट मन पर महदासी।
1: कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते।
0: कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है।
1: कई कोट नपत नाम ते आवै, नानक करते का अंत न पावे।
0: कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी।
1: कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर।
0: कई कोट पर दर्ब को हिर है, कई कोट पर दुख ना कर है।
1: कई कोट माया सुरमा है, कई कोट परदेश भरमा है।
0: जित जित लाभो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना।
1: कई कोट से जती जोगी, कई कोट राजे रस भोगी।
0: कई कोट पंखी सर्पो पाए, कई कोट पाथर बिरखन पजाए।
1: कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल।
0: कई कोट ससिर सूर नखत्र, कई कोट देव दानविंद्र सिर छत्र।
1: सुमदरी अपने सुतार, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार।
0: कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र।
1: कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत।
0: कई कोट किए चरजीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी।
1: कई कोट जाके न प्रसाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा।
0: सब ते नेरा सब होते दूर, नारक आप लिप्त रहा भरपूर।
1: कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर्क स्वर्ग निवासी।
0: कई कोट जन्म जीवे मर है, कई कोट बहु जूनी फिर है।
1: कई कोट बैठती खाए, कई कोट खाले तक पाए।
0: कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत।
1: जय जय भाणा तै तै राखे, नानक सब किश प्रभ के हाथे।
0: कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी।
1: कई कोट प्रभ को खोजन ते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते।
0: कई कोट दर्शन प्राप्यास, तिन को मिलियो प्रभ विनाश।
1: कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग।
0: जिन को हे आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन।
1: कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड।
0: कई कोट होए अवतार, कई जोत कीनो विस्तार।
1: कई बार पसरो पासार, सदा सदा एक अहंकार।
0: कई कोट कीने बहुपात, प्रवते हुए प्रामा है समात।
1: ताका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक पब सोए।
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म परगास।
1: कई कोट तत के बेते, सदा निहारे इको नेत्रे।
0: कई कोट नाम रस पीवे, अमर भय सद सद ही जीवे।
1: कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सहि समावे।
0: अपने जन को सास सास समारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे।
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ दस श्लोक।
0: कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए। नानक तिस बलिहार नै, जल थल महियल सोए। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
1: करन करावन करने जोग, जो तिस पावै सोई होग।
0: किन मैं थापो थाप नहारा, अंत नहीं किछ पारा वारा।
1: हुक्मै तार अतर रहावै, हुक्मै उपजै हुक्म समावै।
0: हुक्मै ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मै अनक रंग प्रकार।
1: कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रहा समाई।
0: प्रपावै मन गत पावै, प्रपावै ता पाथर त्रावै।
1: प्रपावै बिन सास्ते राखै, प्रपावै ता हर गुण पाखै।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। आपके हम हर बार बताते हैं कि इतने सारे ईमेल्स आते हैं, फोन कॉल आते हैं, और आज इसीलिए हमने तय किया है कि कुछ ऐसे सवाल जो बहुत से दर्शकों के होते हैं और बहुत सारा उसमें ही जवाब मिल सकता है, उन्हें हम चुने और अपने प्रोग्राम में शामिल करें और इन सवालों का जवाब साथ मिलकर तराशेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हमारे हम सफर है ब्रह्मा कुमारी से शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: शिवानी, इतने सारे सवाल और इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के सवाल होते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं हम कि मिलते जुलते सवाल हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी वही है, मुश्किलें वही हैं, अड़चने वही हैं, स्ट्रेस उतना ही है, एंगर है, बाकी सारी और चीजें हैं। एक सवाल जो यहाँ पे इन्होंने भेजा है, मुंबई से आया है और विनय जी ने ये लिखा है, मेल भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि आई एम अ मैरिड मैन और मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन हर बार मुझे ये लगता है कि सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मुझ पर बहुत शक करती है। मैं उन्हें इतनी बार समझाने के बाद भी कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कहीं कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आई डू केयर फॉर हर एंड हो ये रहा है कि धीरे धीरे मैं इरिटेट होने लग गया हूँ। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ से भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है और आप शायद उन्हें कुछ समझा पाए और मैं चाहूंगा कि आप बात करें।
1: वेरी टिपिकल प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि जहां दोनों वर्किंग हो गए और दोनों बहुत सारा समय बाहर बिताने लगे, तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम क्रीप अप होने लग गई, क्योंकि हम परिवार के साथ कम समय
0: और बाहर ज्यादा
1: समय बिताने लगे। और एक नॉर्मल भी होता गया कि जहां हम बाहर इतना समय बिताएंगे तो वी विल हैव अ क्लोज फ्रेंड सर्कल देयर, वी विल हैव पीपल हु आर वेरी क्लोज टू अस, बट नाउ इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि हमारे जो क्लोज परिवार के जो संबंध है वो और भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बेस होते जाए। तो कहीं ना कहीं इस केस में एक तो जिन्होंने ईमेल लिखा विनय जी ने, ही ऑल्सो हैज टू डू अ लिटिल वर्क, बिकॉज मे भी उन्हें लग रहा है कि सारा काम
0: कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी।
1: क्योंकि एक क्वेश्चन भी जिस तरह से भेजा है कि आप मेरी वाइफ को ये समझाइए, तो लेकिन हमारा तो हमेशा मोटो यही रहता था वी कांट चेंज अदर पीपल, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे थिंग्स विल बिकम इजी फॉर हर। मे बी शी डजंट हैव टू मच ऑफ अ डाउट, मे बी आई एम फीलिंग लाइक दैट, बिकॉज कई बार हो सकता है कि अगर मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, या छोटा छोटा जो समटाइम्स मे बी जस्ट आउट ऑफ यू नो कि जैसे इकट्ठे रहते हैं, तो इट्स गुड टू नो अबाउट ईच अदर, इट्स गुड टू नो कि हम क्या कर रहे हैं सारा दिन में। लेकिन जब और किसी की नेचर ज्यादा पूछने की होती है कि मुझे पता रहे कि आप सारा दिन कहाँ पर हैं, लेकिन कई बार जब हम बार बार उस तरह का पूछते हैं तो जिससे वो सवाल किए जाते हैं उसको लगता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत डीप रूटेड ये संस्कार बन गया है डाउट करने का। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, वाइफ डाउट कर रही है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हस्बैंड डेफिनेटली डाउट कर रहे हैं कि ये मुझसे
0: क्राउड कर रही है।
1: यू नो, ये एक एनर्जी है जो क्रिएट हो जाती है, तो मे बी इफ शी हैज नॉट सेड इट डायरेक्टली तो मे बी डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम देयर, मे बी बिकॉज क्या होता है जिस वायुमंडल में हम आज हैं, तो हम जब ऑफिस पहुंचते हैं हमारे को ये बातें बहुत कॉमन सुनने में मिलती है। दिस हैव बिकम द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन एवरीवेयर के हस्बैंड का कुछ और
0: वाइफ, इट इरिटेट्स मी सो मच, मुझे कंटिन्यूस इरिटेशन रहती है, मुझे गुस्सा चढ़ने लगता है, मैं उसे चुप हो जाता हूँ, बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू टॉक टू
1: हर। अब हम जब बात करना बंद कर देंगे तो
0: पनिशमेंट वाला जो फैक्टर
1: है कि एक तो दूसरे को दर्द मिलेगा। अब अगर सपोज एक तो है कि पता, आई हैव टू मेक श्योर कि वाइफ डाउट कर रही है या नहीं। नाउ अगर कर रही है, हाउ डू आई मेक हर अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शब्दों से नहीं होगी। उन्होंने कहा मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे से वो सही एनर्जी नहीं पहुंच रही,
0: व्यवहार में लानी पड़ेगी आपको।
1: तो अब जो हम कर रहे हैं वो और ही दूरी ला रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम इरिटेट हो रहे हैं कि हम बात करना ही बंद कर देते हैं। अब अगर हम बात करना ही बंद कर देंगे तो डाउट और भी
0: ज्यादा स्ट्रांग
1: बढ़ता जाएगा। तो नाउ इफ आई लुक एट हर विद कंपैशन, राइट नाउ आई एम लुकिंग एट हर विद एंगर कि ये क्यों डाउट कर रहे हैं।
0: मेरी यू नो अगेन दिस थिंग कम्स यहाँ पे शिवानी की शायद वो अगर डाउट कर रही है तो वो पेन में है।
1: वो पेन में तो है ही,
0: बिल्कुल
1: बहुत दर्द में है। आप इमेजिन करो ना, दो क्षण के लिए अपने आप को वाइफ की स्थिति में रख के देखो वो कितने दर्द में है। अब इस दर्द में क्या मैं उसको और दर्द दूं? यही तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। पहले हमें हो रहा था गुस्सा, क्यों डाउट कर रही है, जबकि मैं सिंसियर हूं तो क्यों डाउट कर रहे हैं मेरे पर। तो वी सेंट एंगर, एंड एंगर जैसे इन्होंने कहा व्यवहार में भी आने लग गया, थॉट्स में भी नहीं। तो आई हैव टू फील कंपैशन कि वो डाउट कर रहे हैं, मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच टर्मोइल। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है इसको हमें चेंज करना होगा। तो स्टार्ट गिविंग हर मोर पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी कि मे बी बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कहीं से मिले होगी, या फ्रेंड्स बहुत ज्यादा उस तरह की बात करते हैं, या उनको अपने ऑफिस में कई ऐसे लोग दिखाई देते होंगे जिन्होंने इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो डाउट बैठ गया। मुझे उस डाउट को फिनिश करने के लिए और भी प्योरिटी और भी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी इफ दैट रिलेशनशिप मैटर्स टू मी। सी दैट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर रिलेशनशिप मैटर करता है देन इट इज नॉट अबाउट ईगो कि आप गलत हैं, आप मुझ पर कैसे ये डाउट कर सकते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए इस समय ये रिलेशनशिप में दर्द है, मुझे इस दर्द को हील करना है, क्योंकि सामने वाले के अंदर तो इस टाइम ताकत ही नहीं
0: है। डेफिनेटली बिकॉज ही सेज मैं हर्ट हो रहा हूँ। सो अगेन हमने बात ये की थी कि हर्ट कोई और नहीं कर सकता हमें, हम खुद करते हैं।
1: तो अगर कोई डाउट भी कर रहा है लेकिन अगर मैं सिंसियर हूं तो मुझे क्यों हर्ट होना चाहिए? मुझे हर्ट इस बात से होता है कि तुमने मुझे डाउट किया कैसे। यू सी दैट्स ईगो, that's where it gets hurt. But if I understand from her perspective, I will see it's okay. Accept, it's understandable. और जितनी जल्दी हम उसको heal कर देंगे उतनी जल्दी वो trust बहुत जल्दी build हो जाएगा। हमें लगता है इसने doubt कर दिया तो इसका मतलब कोई trust
0: हो गया, वो लड़ाई होती रहती। बहुत सुंदर विनय जी यही कहना चाहेंगे कि प्यार अगर आप करते हैं सचमुच, इफ यू
1: रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए मेरे लिए,
0: अगर वो इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और यू रियली लव योर वाइफ देन एक्सेप्ट हर। दिस इज व्हाट वी सेड, लविंग समबडी मींस एक्सेप्टिंग। और अगर आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं।
1: जैसे कई बार क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक को कोई बीमारी लग जाती है, इट कुड बी एन एक्सीडेंट जिसमें आप फिजिकली हैंडीकैप हो जाते, या आपको कोई ऐसी इलनेस हो जाती है जो ठीक नहीं होती है। हमें बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं दूसरे मेंबर से। मेजोरिटी तो होना चाहिए या होता है कि स्पाउस बहुत अंडरस्टैंडिंग है और विद योर फिजिकल हैंडीकैप ऑल्सो आई एक्सेप्ट यू। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पहले तो ठीक थे लेकिन अब आपका ये हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। नो, विद द फिजिकल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो विद अ लिटिल इमोशनल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। वो बिल्कुल ठीक थे लेकिन थोड़ा सा हैंडीकैप आ गया, थोड़ी सी चोट लगी है बीच में, तो क्या हम रिजेक्ट कर देंगे? जिसको चोट लगी है उसको ही डांटना शुरू कर देंगे? सिर्फ ये है कि फिजिकल एलिमेंट और फिजिकल हैंडीकैप देखना बहुत इजी लगता है, इट्स इजी, लेकिन इमोशनल एलिमेंट देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम खुद ही चोट में बैठ जाते हैं
0: और इमोशनल एलिमेंट में हम दूसरे को दोष देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। यू नो, सी वी डोंट टेक इट एज एन एलिमेंट, वी से यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
1: रिस्पॉन्सिबल एंड नाउ यू हैव हर्ट मी, सो नाउ आई हैव द राइट टू हर्ट यू। तो आपने मुझे डाउट किया,
0: इमोशनल एलिमेंट एक्चुअली
1: यही तो हो रहा है ना, तो वही तो बात हुई थी कि आप भी दर्द में तो मैं भी दर्द में, तो आपने मुझे डाउट किया तो अब मैं आपको गुस्सा करूंगा, तो क्या हुआ, आप भी दर्द में मैं भी दर्द में।
0: वंडरफुल, दैट्स एक्चुअली अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। और कहीं ना कहीं आप शायद विनय जी उम्मीद ये कर रहे थे कि हम आपकी वाइफ से बात करना चाहेंगे, लेकिन जरूरी यही है कि बदलना हमें खुद को होगा।
1: हाँ, और ये सिर्फ इस प्रॉब्लम को नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग जस्ट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग कि ये हर प्रॉब्लम जो हमारी फैमिली में या हमारी कोलीग्स के साथ आ जाता, लुक एट इट एज अ हैंडीकैप, लुक एट इट एज एन इलनेस, डू नॉट लुक एट इट ये तो है ही ऐसे। मतलब हमें ये समझना होगा जानबूझकर कोई कुछ नहीं कर रहा होता, कहीं ना कहीं वाइफ के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि वो अपने हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही है, मेजर इनसिक्योरिटी है अंदर, इस कारण से उसको लग रहा है कि आप बाहर किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, क्योंकि उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं
0: कम है, बहुत कम।
1: इतनी कमजोर आत्मा के ऊपर अब और क्या गुस्सा करना, इट्स नॉट राइट.
0: लेकिन
1: इट्स नॉट राइट,
0: बात वही होता है कि हम भी उतने ही कमजोर होते हैं और वो जब दो कमजोर आत्माएं साथ होती हैं तो फिर परमात्मा,
1: व्हाट इट्स ऑल बिकम अबाउट अंडरस्टैंडिंग. जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो हमें औरों को भी अंडरस्टैंड करना इजी हो
0: जाएगा. वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिस्टर शिवानी. और अब एक और मेल हम लेते हैं यहाँ पर. ये एक बच्चे का मेल है और मजे की बात यह है कि इस प्रोग्राम के दौरान हमें इतने स्टूडेंट्स के और यूथ के मेल आए हैं जो ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं जो उन्हें लगता है कि कहीं नहीं कर पाते. एंड दिस इज अ गर्ल हु इज 14 ईयर ओल्ड. शी सेज माई मदर इज वेरी ब्यूटिफुल. Till some time, I had a lot of confidence on her. I was very proud of her. वो एक वर्किंग वुमेन है और मेरी उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था. लेकिन धीरे धीरे अब मैं ये देखती हूँ, I started hating her. Why? Because I find her much more beautiful than me. और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैंने ये देखा, अपनी फ्रेंड से भी बात करने की कोशिश करती हूँ लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मी से बहुत दूर चली गई हूँ. This is a child talking.
1: It just shows कि हमारी इनसिक्योरिटी किस लेवल तक पहुंच गई है. पहले ये होता कि अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे से ज्यादा ब्यूटीफुल हैं या मेरी सिस्टर या ब्रदर मेरे से ज्यादा अट्रैक्टिव है तो हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती. लेकिन पेरेंट्स के साथ इस तरह की चीज फील करना, पहली बात तो हमने यही समझा कि ब्यूटीफुल एक्चुअली मतलब क्या है, है ना. अभी ये क्यों ये इनसिक्योरिटी आ रही है, इट कुड बी विद मदर, इट कुड बी विद एनीबडी एल्स, इट कुड बी विद फ्रेंड्स. इट इज बिकॉज जो ज्यादा सुंदर है फिजिकली, हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको औरों से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी. और उसको औरों से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती और मुझे नहीं मिलती है तो मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है. क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम इस पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. एंड आई बिलीव कि आप मेरे बारे में सोचते हैं कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल, या आई बिलीव कि आप सोचते हैं कि शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी, सो आई स्टार्ट फीलिंग यू लाइक हर मोर देन मी. एंड ये मेरे लिए बहुत डैमेजिंग हो जाता है क्योंकि मैंने सारा कुछ इस बिलीफ पर बेस कर दिया कि फिजिकल लुक्स एक्सेप्टेंस लाते हैं, फिजिकल लुक्स पे मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है और लोगों की अप्रिसिएशन मेरी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है. अब क्या होता होगा मे बी कि जहां भी मदर एंड डॉटर इकट्ठे जाते हैं, इफ शी फील्स कि फिजिकली मदर उससे ज्यादा सुंदर है, शी मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग कि मदर को ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है. और जहां ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता तो शी मस्ट हैव फेल्ट कि ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. अब ये समझने की बात होगी कि इट्स नॉट एक्चुअली फिजिकल ब्यूटी. किसी को भी आप सिर्फ एक दो मिनट के लिए फिजिकल ब्यूटी पर आप इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन जहां तक कि लोगों की हमारे प्रति एक्सेप्टेंस या हमारे तरफ अट्रैक्ट होने की जो बात आती, इट्स मोर ऑन माय एनर्जी लेवल. सो एंड इन योर मदर, आई मीन यू कैन नेवर कम्पीट विद अ मदर.
0: बट देन आई कैन अंडरस्टैंड, शी इज याना फ्रॉम राजस्थान एंड शी इज सो हर्ट. मतलब आप एंगर और हर्ट से जुड़ा हुआ कि शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड नाउ आई डोंट इवन वॉन्ट टू टॉक टू हर.
1: हाँ, लेकिन इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये प्रॉब्लम तो खुद की क्रिएट की हुई है. एंड वन थॉट एंड वो फिनिश हो जाएगी.
0: ज्यादा टीनेजर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं,
1: क्योंकि सेल्फ एस्टीम बहुत लो है इस टाइम. और सेल्फ एस्टीम सारा फिजिकल पर बहुत ज्यादा आधारित है. एंड सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंडेंट है कि कितने लोग
0: मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे अटेंशन कितना दे रहे हैं, मैं जहां जाती हूँ मुझे देखते हैं.
1: सेल्फ इतना वैक्यूम में है कि मुझे औरों की अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि पहली बात, मेरी सेल्फ एस्टीम के लिए मुझे औरों से अटेंशन नहीं चाहिए. और दूसरी बात, दूसरे लोग भी अगर आपको चाहिए एक्सेप्टेंस, देन इट्स नॉट फिजिकल ब्यूटी, इट्स योर इनर ब्यूटी. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट. अपने इनर सेल्फ पर काम करना शुरू करें. मे बी इट्स पॉसिबल दैट फिजिकली तो आपकी मदर अट्रैक्टिव है ही है, लेकिन इट्स ऑल्सो दैट शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन,
0: है
1: ना. तो शी सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, तो उनके अंदर से वो पॉजिटिविटी जो रेडिएट होती है उसके प्रति लोगों का आकर्षण होता. और इसको देख देख के मैंने अपने अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, वो नेगेटिव ऑरा मेरे अराउंड है, उसकी वजह से लोग मेरे से
0: दूर होते जाएंगे
1: और भी दूर हो जाएंगे. क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो वॉक इन करता, यू कैन फील द एनर्जी. आप फील कर सकते हैं कि कितना फियर है, कितनी इनसिक्योरिटी है. तो नथिंग अबाउट द फिजिकल लुक, लेकिन लोग वैसे ही दूर हो जाएंगे बिकॉज आई एम कैरिंग अ वेरी नेगेटिव ऑरा. तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल लुक्स. वो आधारित है कि हमारा ऑरा क्या है. जैसे ही हम किसी भी कमरे में प्रवेश करते, हमारे साथ साथ हमारी एनर्जी फील्ड एंटर करती है एंड वो एनर्जी फील्ड डिसाइड करती है कि और लोग मेरी एनर्जी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं या मुझसे दूर होना चाहते हैं. तो उस पर वर्क करें एंड यू विल हैव एवरीवन विद यू
0: एंड समवेयर आई थिंक शी विल हैव टू एक्सेप्ट हर मदर एज वेल. यू नो
1: मदर इज ऑलरेडी अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन इंटरनली ऑल्सो. इट्स अंडरस्टैंडेबल एंड शी शुड अंडरस्टैंड दैट शी शुड लाइक द आइडिया दैट हर मदर इज सो ब्यूटीफुल.
0: सो इट्स
1: एक थॉट है कि यू नो इनसिक्योरिटी किस बात की. कुछ भी नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि उनको जब वो दोनों कच्चे होंगे
0: और कितना बिल्डअप कर लेते हैं इतना हर्ट में रह के, इतना हर्ट में रह के कंटिन्यूअसली, यानी आप अपने आप को बहुत ज्यादा दुख दे रही हैं कहीं ना.
1: और ये आज आप अपनी मदर के साथ एक्सपीरियंस करें, कल आप औरों के साथ भी करेंगे. तो इसको अगर बिलीफ को
0: आप कर देना,
1: यहाँ ही ठीक कर दिया, तो ये इनसिक्योरिटी मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होगी और रिलेशनशिप्स में. और अगर मेरा मदर डॉटर रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो मैं अपने आगे की रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग नहीं बना सकूंगी. मेरे हर रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक हीनता की भावना, एक भय और एक इनसिक्योरिटी महसूस होती रहेगी. मुझे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनसे डर है, उनसे खतरा है, तो मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी. और ये मेरी अपनी प्रॉब्लम होगी. आई हैव टू रिमेम्बर ये औरों की वजह से नहीं है.
0: जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी. आप आज बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत करके हमें लिखा है. इट्स अ बिग स्टेप. अगला स्टेप ये है कि आप जिम्मेदारी उठाइए आप अपने जिस भी जो भी आप फील कर रही हैं. और फिर एक थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे.
1: इस केस में तो वो रियलाइज भी कर रही होंगी कि मदर की कोई गलती तो है ही नहीं है. इट्स जस्ट दैट उनको ये लग रहा होगा मुझे ऐसे थॉट्स आई क्यों रही है. तो कुछ नहीं, स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट और अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर दें. वो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दें और अपने आप.
0: एंड ऑलवेज बिलीव दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर दैट ब्यूटीफुल सोल एक्चुअली. असिस्टेंट शिवानी, एक और सवाल है जो बहुत से दर्शकों का सवाल से जुड़ता है और ये है विदेश शर्मा जी हैं. ये इन्होंने हैदराबाद से लिखा है. ही इज अ रिटायर्ड जज एंड ही सेज आई हैव गॉट टू सन्स. बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बच्चे हैं दोनों, एक अमेरिका में है और एक बैंगलोर में है. मैं और मेरी वाइफ एक बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन अब मैं 65 के करीब हूं, ज्यादा हूं. मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं, मेरा मन ये करता है कि बाकी लोग भी देखें, बहुत अच्छा लगता है. पर मैंने अपने हिसाब से ही बच्चों को कभी भी बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आने दिया था. जब वो छोटे थे तब मैं इतना बिजी था अपने प्रोफेशन में और वाइफ के साथ जो था वो भी एक दूरी बनी रही क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहा. अब इतनी लोनलीनेस में फील करता हूं, ना बच्चों के साथ रिलेट कर पा रहा हूं, ना वाइफ के साथ रिलेट कर पाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूं उनको. और वाइफ ने अपना सर्कल बना रखा है, मेरे पास ना मैं कह पाता हूं अपने बच्चों से कि मैं लोनली हूं, क्योंकि मुझे अब प्रोग्राम भी देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैंने भी उन्हें लोनलीनेस कहीं दी है. और ना मैं वाइफ के साथ जो है अपना रिलेशनशिप दोबारा, मतलब मुझे पता ही नहीं कि कम्युनिकेट कैसे करूं मैं. एंड देयर इज दिस लोनलीनेस व्हिच इज सीपिंग इन, सो आई वांट टू शेयर इट विद यू.
1: ट्रू. नाउ ये बहुत अच्छा है कि ये एक रियलाइजेशन आ गई है. और कहीं ना कहीं और भी एक बात जो बहुत अच्छी है वो है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उसकी. यू नो ये एक फर्स्ट स्टेप है जो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया.
0: आई थिंक ही सेड बिकॉज ऑफ द यू नो प्रोग्राम आई हैव बीन सीइंग, आई एम रियलाइजिंग दैट
1: बिकॉज यू स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ. तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला स्टेप

0: औरों को और लोग भी क्योंकि है तो फैमिली तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये तो बहुत नजदीक के संबंध है, ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करना चाहते होंगे, इट्स जस्ट दैट उनको तो इसी व्यवहार की आदत पड़ी है ना बहुत समय से।
1: अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चला कि आप बदल गए, ये ना हमने कहा था एक बार पहले।
0: क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में तो पुराना वाला पास्ट एक्सपीरियंस से चल रहा है, क्योंकि लेबलिंग ये होता है वो ब्लॉकर बिलीफ, यू नो, जो हमने सोच देखा था कि किसी को भी हम एक लेबल लगा देते हैं कि ये तो ऐसे है। हाँ। अब क्या होगा, वाइफ बच्चे सभी एक साइड पर, जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम के साथ कि ये हमारे फादर ये तो है ही ऐसे, नाउ इट विल नीड टाइम फॉर देम फॉर दैट बिलीफ सिस्टम टू चेंज, तो उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए मुझे ही वो एनर्जी भेजनी पड़ेगी, अगर तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बहुत समय से एक ऐसी पर्सनल कॉन्वर्सेशन शायद की नहीं, तो बहुत इजी नहीं होगा बताना कि यू नो आई एम रियलाइजिंग, क्योंकि इजिएस्ट वे तो अदरवाइज ये है जस्ट गो एंड शेयर कि आई हैव रियलाइज्ड, लेकिन हमारे ईगो हमें ये सब करने से रोक देती है। सिंपल, बहुत सिंपल होगा अगर यू कैन वॉक अप टू ऑल थ्री एंड टेल देम आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने अपनी पूरी जीवन क्या किया है, बट नाउ I have realized and so I have changed. You know, not even wanting. I have changed. And कुछ उसके बाद बोलना नहीं है कि मुझे ये करना है या मुझे वो relationship build होना है, वो एक barrier है जो मैंने ही रखा था बीच में, अब मुझे जाकर सिर्फ उस बैरियर को हटाना है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो तो वैसे ही रेडी थे, तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो या तो मैं एनर्जी से उस बैरियर को हटाऊं, और अगर मेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी है तो अगर मैं सीधा वो मैसेज कन्वे कर देता हूं तो वो बैरियर एक क्षण में फिनिश हो जाएगा, एंड इतना ब्यूटीफुल ये रिलेशनशिप होता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ हमने पकड़ के रखा है कि हम दूर हैं, हम दूर हैं, दूर मतलब क्या, रिलेशनशिप है क्या, एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है बहुत समय से हमने एक्सचेंज किया ही नहीं, हम अलग अलग होके बैठे थे, बीच में एक वॉल था, आज वो वॉल हट गया, क्या होगा, एनर्जी फ्लो बिगिंस, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट, इसमें कोई पुरुषार्थ तो इनको करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट बिगिन, एंड अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत समय से कम्युनिकेट नहीं किया, अगेन बिगिन,
1: स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। एक्चुअली अगर आप ये नहीं भी कहना चाहते कि जैसे आपने कहा कि ईगो आ जाती है कि मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने जिंदगी भर क्या किया, तो आई थिंक एक बार कॉन्वर्जेशन कहीं पर भी कहीं पर
0: मैसेज कन्वे कर देंगे ना, अपने थॉट पैटर्न और अपने बिहेवियर से हम वो मैसेज कन्वे कर देंगे, और एक्चुअली जैसे ही आपकी थॉट चेंज होती है सामने वाले को वो वाइब मिल जाता है,
1: इतना इजी होता है, इट्स जस्ट वन थॉट एक्चुअल, इन्होंने कितना बड़ा हमने बनाए हुए होती है वो चीज कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
0: उनको वो वाइब मिल जाएगा, एंड इमेजिन दे आर तो एनी वेज वेटिंग, वो तो वेट कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा इस बात को लेकर और शायद कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है।
1: बिल्कुल, एंड मे बी यू नो कहीं इनको ये भी हो सकता है, इनको ये एक रिजेक्शन का डर भी लग रहा हो शायद कहीं, कि क्योंकि मैंने जिंदगी भर नहीं किया है
0: वही इनसिक्योरिटी है, लेकिन यही याद रखना होगा कि जब हम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे देयर इज नो वे कि हमें रिटर्न में नेगेटिव मिलेगा, हो सकता है थोड़ा एप्रिहेंशन हो, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा एप्रिहेंशन हो तो भी आई हैव टू जस्ट कीप
1: गिविंग, बिकॉज नाउ द टाइम
0: मैं वो पॉजिटिव एनर्जी देता जाऊं, द अदर पर्सन इज रेडी।
1: वंडरफुल सिस्टर शिवानी, इनफैक्ट जो इतने सारे हमारे पास मेल्स आए आज भी, हमने कई सारी समस्याएं ली, एक बात हम क्योंकि वक्त नहीं है बट खत्म करें कि ये जो पूरा राजयोग का ये जो पूरी हमारी जो ये जो ज्ञान है, तो उसमें हर सवाल आप तक नहीं पहुंच सकता या हम पूरा नहीं इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते, क्या ऐसा किया जाए कि अपने सवालों के जवाब हमें खुद भी मिलने शुरू करें?
0: अपने सभी सवालों के जवाब हमारे पास अपने पास ही है, क्योंकि उसकी जो बॉटम लाइन प्रॉब्लम है वो हमें पता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करना पड़ेगा, और उसमें सिंपल सिर्फ यही है, जब तक औरों को ब्लेम कर रहे थे तब वो बिल्कुल दिखेगा नहीं, जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा कि एकदम से मुझे जड़ से पता चल जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हर सिचुएशन में, एंड दैट मीन्स एवरी सिचुएशन, लेट इट बी एनी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन, इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या इसमें वेयर डिड आई गो रॉन्ग, नॉट यू वेंट रॉन्ग, जैसे यू वेंट रॉन्ग फोकस इज चेंज, तो फोकस इतना इंटरनलाइज होता जाएगा, इसी को बोलते हैं लुकिंग इनवर्ड्स, जो आज दिन तक हम सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी।

0: means look inwards. The look inwards is not ke kya dekhu, lekin अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें और अपना रोल देखना शुरू करें, अपना पर्सपेक्टिव देखना शुरू करें और कहां मेरे पर्सपेक्टिव में परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
1: बहुत सुंदर आपने बात की सिस्टर शिवानी, और यही वक्त है कि हम विराम लें, लेकिन आपसे ये कहना चाहेंगे कि इतना सारा जो प्यार हमें मिल रहा है और सवालों के जवाब हम खुद भी मिलकर तलाश सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शांति शांति।
1: जरूरत इसी बात की है कि खुद को पहचानने के बाद अब जब हम अवेयर हो गए हैं, जब हम समझ रहे हैं कि हमारी ये मुश्किल हो सकती है, फिर जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदारी हम खुद उठा लें, क्योंकि ये बात हमें राबिन करनी है कि कोई और नहीं बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी ना तो कोई दूसरा व्यक्ति बदलेगा। अगर हम अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो बदलना हमें खुद ही होगा। कहां बदलना है, कैसे बदलना है, क्या बदलना है, ये भी हम अपने इंट्रोस्पेक्शन में जाकर, अंदर जाकर अपने आप को पहचान कर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई अभी भी ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई और सजेशन है प्रोग्राम से जुड़ा हुआ, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999 3444 6 9 8 7 3 6 6 5 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसा सफर है जिसमें हम लगातार चल रहे हैं। आप भी इस सफर का हिस्सा हैं, इस पूरे परिवार का हिस्सा हैं। तो आपको हम आमंत्रित करते हैं, ये सफर यूं ही चलता रहेगा। अब वक्त है कि थोड़ा सा विराम लें, लेकिन आने वाली कड़ियों में फिर मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाजत, ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 09999 3444 6 6 0 9 8 7 3 6 6 5। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के सभी कार्यक्रम अब BCDs पर भी उपलब्ध हैं। 10 BCDs के एक सेट की कीमत ₹300 है। अपने सेट का ऑर्डर भेजने के लिए आप ₹300 का डिमांड ड्राफ्ट या चेक ओम शांति सोसाइटी के नाम पर इस पते पर भेजें। ओम शांति सोसाइटी 355 तरुण एनक्लेव आउटर रिंग रोड पीतमपुरा दिल्ली 34। फोन 09873 6 6 5। आप अपना नाम, पता, फोन नंबर और किस वक्ता की VCD ऑर्डर करना चाहते हैं ये लिखकर अवश्य भेजें। डिमांड ड्राफ्ट या चेक और आपके ऑर्डर से संबंधित बाकी जानकारी प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर आपको VCD का सेट मिल जाएगा।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: लखंड तार हुए जन्म सोहेला, पीव पौहल खंड तार।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आई

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी।
2: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए,

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: विश्वास खान एंड यू लिसनिंग टू हांजी रेडियो 1674 AM।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
2: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। You are listening. Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji. Radio Haji. 1674 AM. 24/7 Indian Radio. Sydney ka apna Indian radio station. Radio Haji. Stay tuned.
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: हाँ जी हाँ जी, यो

0: गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।